है तुझे लगे जाए जमन मरना हुक्म पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निज संभाल नानक जिन्ने गुरमुख बुझया तिना सूत कनाए

लगा दुख अन्न देवता पानी देवता वैसंत्र देवता लू पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पित पापी सौ तन गड्या तुका पंजा तित जित मुख ना।

तू ठाकुर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई। ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर न कोई। मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी,

रुझायो। जो जो कर्म कियो लालच लग, तह ते आप बंधायो। हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत शाड बिखे बिख खाही। माया मोह भरम बै भूले, सुत द्वारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुने ओ गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई।

एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। जब लो नहीं पागल लारुद तब लो भ्रमते फिरते बोतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिटै नहीं रे पछुतायो। तत विचार

0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी रब दातो दातार, अरे ओ जाचक एक सरना, मिले दान संतरीन, जेह लग भौजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर पावे, देह दर्श मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा। जुग जुग अटल चवर शतर तख दे मालक सतगुरु, जहरा जहूर अते हाजरा हजूर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठे परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी ने बख्शिश कीती है अमृत वेले सतगुरु जी दे दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। मान जोग भाई साहब भाई गुरदास जी दा वचन है, बलिहारी तिन्ना गुरसिखा जाए जिन्ना गुरदर्शन डिठा, कि जिन्ना ने गुरु घर च जाके गुरु के दीदार कीते उन्हां सिखा तो मैं बलिहार हां। फिर अगली गल के बलिहारी तिन्ना गुरसिखा पैरी पै गुरसभा बेठा, जिहड़े गुरु चरणा ते नमस्कार करके फिर गुरु की सभा च गुरु दरबार च बैठते ने गुरु की गल सुनते ने उन्हां तो कहिंदे बलिहार हां। बलिहारी तिन्ना गुरसिखा गुरमत बोल बोल दे मिठा, जिहड़े गुरु की गल सुनते ने ते गुरु की गल सुन के फिर उन्हां दा बोल चाल भी गुरु वाला हो जांदा है, मिठे बचन बोलते ने। बलिहारी तिन्ना गुरसिखा पुत्र मित्र गुर भाई इठा, जिहड़े गुर भाइयां नूं पुत्रां मित्रां वांगू प्यार करदे ने। बलिहारी तिन्ना गुरसिखा गुर सेवा जानन अवरेठा, जिहड़े गुरु की सेवा नूं उत्तम जानदे ने प्यारे जानदे ने। भाई सब कहिंदे उन्हां तों कुरबान, इहो जिहा गुरसिख मिल जाए तो गुरसिख मिलिया पाप पनिठा। वह गुरसिख आप भी तरदा होरना नूं भी तरदा। आप जी ने जिथे गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की कथा विचार जो आप जी हर रोज सरवण करते हो, उस दे नाल संबंधित गुरु के ए पावन बचन वडहंस राग की वार विचों मान योग भाई साहब जी आप जी नूं सरवण करा रहे सन। ए वार गुरु रामदास जी महाराज जिथे बख्शिश कीती हुई है, वार दी ए छेवीं पौड़ी दे नाल दो श्लोक सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज दे हन। पवित्र पौड़ी अंदर गुरु रामदास जी महाराज ने गुरु की महिमा गायन कीती है। गुरु तो बिना मनुख दे मन दियां भुखां मिट नहीं सकदियां, दुख मिट नहीं सकदे। मनुख दे अंदर एक तृष्णा है, वह अग दी न्याई है। गुरबाणी च वार वार तृष्णा का जिक्र किया है। तृष्णा का अर्थ हुंदा कि जो कुछ मेरे कोल है जां जो कुछ मैं कमा रहा उहदे नाल मैं रजिया नहीं, होर मिल जाए होर मिल जाए। तृष्णा का सुभा है अग वर्गा। कोई बंदा यह सोचे कि अग ते बहुत सारियां लकड़ां पा दियो ये रज के बुझ जाएगी, वह कदी बुझ जाएगी भला, वह ते होर उच्चे भांबड़ उठणगे। बिल्कुल एवें जिहड़ी साडे अंदर एक तृष्णा है, ज्यों ज्यों साडे कोल पदार्थ हुंदे ने त्यों त्यों ये होर वधदी चली जांदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचन के सहस खटे लख को उठता वै त्रिवत न आवै माया पाछै पावै। मनुख नूं रजेवा नहीं हुंदा, रजदा नहीं, जिवें अग रजदी नहीं ना बालण दे नाल लकड़ां दे नाल, बिल्कुल एवें मनुख रजदा ही नहीं। दुनिया के जिन्ने मर्जी पदार्थ आ जाण उहदी भुख होर वधदी चली जांदी है। तृष्णा नूं बुझाउण दा इको एक तरीका है कि मनुख नूं जे अपने आप दा पता लग जाए। जदों मनुख नूं अपने आप दा पता नहीं ना हुंदा, क्योंकि हर मनुख दे अंदर वाहिगुरु जी ने खजाना रखिया होया है, दौलत रखी हुई है। जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे बंदिया तेरे अंदर एक खजाना है, वह खजाना जिहड़ा जिहनूं असीं रोज बचन पढ़दे मत विच रतन जवाहर माणक। गुरु रामदास जी का वचन के मनमुख कोठी अग्ञान अंधेरा तिन अंतर रतन न लाखा। मनुख दे अंदर अग्ञानता दा हनेरा है, इस करके अपने हिरदे विचले खजाने नूं रतना नूं ओ जानदा नहीं है। ते गुरु कोल जदों असीं आउने आं गुरु साहिब जी सानूं चानण दिंदे सोझी दिंदे साडा ज्ञान दिंदे ने।
मनुख नूं अपना ज्ञान नहीं ना, जिवें असीं दस्तार सजा लईए कपड़े पा लईए ते उहनूं समझण दे लई शीशे दे मूहरे खड़े होंने, शीशा सानूं साडा सरूप दस दिंदा है कि तुहाडा लिबास किहो जिहा है, तुहाडा चेहरा किहो जिहा है, तुहाडे कपड़े किहो जिहे ने, शीशा इह कुछ दसदा है। गुरु शीशे दी न्याई है, गुरु सानू दसदा है कि तुसीं किहो जिहे हो, तुहाडे कोल की है। जदों गुरु कोल आके सानू अपने आप की समझ लग जाए ना, ते गुरु अर्जन साहब जी एक बचन कहिंदे, गुर प्रसाद आपन आप सूझै, जिसकी जानो त्रिस न बूझै, साध संग हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हरजन रहत। कहिंदे कि जेड़ा बंदा गुरु की कृपा सदका अपने आप नूं समझ ले ना, अपने आप नूं, उहदी त्रिसना मुक जांदी है, उहदी भटकना मुक जांदी है। वह सत संगत विच आके हर हर जस कहत, परमात्मा दे गुण गाउंदा, फिर शुकराना करदा। साडी जिंदगी अंदर दुखां दा रोगां दा कारण साडी तृष्णा है।

सानू दातां देण वाला परमात्मा है, एवें भटकियां को गल नहीं बननी। जो साडा परमात्मा साडी सिर ते है, देखो ना, जिस दे मां प्यो सिर ते होण, चंगे अमीर होण, उहनू कादी चिंता है। साडा ते मां प्यो परमात्मा है। असी रोज अरदास करदे, तुम मात पिता हम बारक तेरे। जे साडा मां प्यो परमात्मा है, गुरबाणी ए गल कहिंदी, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, उहनू कादी भुख है जिहदा पिता परमात्मा है। हुण जिन्हों परमात्मा ते भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है ना, वह भटकदा सारी जिंदगी। वह सारी जिंदगी खजल खुआर वह सोचता है कि शायद यह धन दौलत ही सब कुछ इन कठिया कर लो। करता रहिंदा है, वह बड़े जतन करके कर भी लैंदा है, जोर जुल्म करके, झूठ बोल के, हेरा फिर कर लैंदा है। पर जान लग्या जो कुछ भी नाल नहीं ना जांदा, फिर झूरदा जांदा है। फिर उस वेले पता की हुंदा, हथ मरोड़े तन कप्पे स्याहो होवा सेत, छड़ खड़ोते सखिने मैं जिनसों लगा हेत। जिन्ना चीजां नाल प्यार बनिया सी, मोह बनिया सी, उह ते क्षण विच लांबे हो गई। ना तन ना दौलत, देखो इस दुनिया तो ते सारियां ने जाणिया, इह ते कुदरत दा इक कानून है, इहनू ते कोई बदल नहीं सकदा। जाना कोई दुख नहीं है, इह ते सारे जगत दे लई इको ही निजम है। दुख ते तां गणी है जे साडे लई अनहोणी होए, चिंता ताकि कीजी है जो अनहोणी होए। फिर बंदा परेशान क्यों हुंदा है? वह परेशान इस करके नहीं हुंदा जान करके, परेशान इस करके हुंदा है कि जेड़ियां चीजां मैं इन्नी जिंदगी लगा के कट्ठियां कीतियां ते नाल ही कोई नहीं जा रही। दुख इस गल दा हुंदा है कि जिन्हां दी खातिर इन्नी जिंदगी मैं गाल दित्ती ते मेरा साथ ही कोई नहीं दे रहा, दुख इस गल दा हुंदा है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे, बंदे जिहड़ी तृष्णा है तेरे अंदर, यह उदों खत्म होगी जदों तेनों अपने आप की सोझी हो जाएगी। गुरु साहब जी सानू साडा ज्ञान दिंदे ने, सोझी दिंदे ने कि बंदिया मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जे तू अपने आप नू जान ले ते रब नू भी जान लेगा। सतगुरु सचे पातशाह जी अज दे इस मुखवाक राही गल तृष्णा दी करके, कि तृष्णा बुझणी है गुरु दे उपदेश राही परमात्मा दे प्यार वि जुड़ के। तृष्णा बूझे हर के नाम, महा संतोख होवे गुरबचनी, प्रभ सिउ लागे पूर्ण ध्यान। जदों असी गुरु के बचन सुनदे आं उदों साडे अंदर संतोख पैदा हुंदा है। संतोख तोख संस्कृत दा लफ्ज़ है, तोख दर्थ हुंदा खुशी, चाओ आनंद। संतोख दर्थ के साडे अंदर तोख संस्कृत दा लफ्ज़ है, तोख दर्थ हुंदा खुशी, चाओ आनंद। संतोख दर्थ के साडे अंदरों आनंद पैदा हो जांदा है। संतोख जो कुछ है उहदे विच आनंदित हो जाणा। जदों असी गुरु राही परमात्मा दे प्यार विच जुड़दे आं, सानू पता लग जांदा कि रिजक ते परमात्मा ने देना है। साडे आउण तों पहलां वी तूने दित्ता है, पत्थरां च वी ते जीवां नूं दे रहा है, पाणी च वी ते जीवां नूं दे रहा है। गुरु के बचन सुणांगे, गुरु साहिब जी सानू ज्ञान देणगे। बंदिया नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी हे, जल मैं जंत उपायन तिन्हां पिरोजी दे। उथे हट ना चली ना को किस करे, सौदा मूल ना होवी ना को लेवै दे। तू चिंता कानू करदा है? चिंता ते रब नू जिन्हें तेनू पैदा कर दिता है। देखो ना, बच्चा है निका जा, उहदी चिंता मां प्यो नू हुंदी, बच्चे नू चिंता दी की लोड़ है? गुरु साहिब कहिंदे, तेरी चिंता परमात्मा नू है, तू परमात्मा दे प्यार च जुड़। जदों असीं गुरु कोल आउने आं, गुरु साहिब जी दे बचन सुण के अंदर संतोख पैदा हुंदा है। महा संतोख होवे गुरबचनी, गुरु के बचना राही साडे अंदर संतोख पैदा हुंदा है। गुरबाणी पढ़न दा की लाभ है, या गुरबाणी पढ़न दा की मनोरथ है? बाणी इस लई नहीं पढ़नी, माफ करना, जिन्नी मर्जी पढ़ो, वध तो वध पढ़ो, तुहाडा अधिकार है, वाहिगुरु मेहर करे, वध तो वध पढ़ो। पर बाणी इस लई नहीं पढ़नी कि मैं 31 पाठ कर लांगे तो रब खुश हो जाएगा, जां 52 कर लवांगे। करो 52 100 कर लो, कोई रोकदा नहीं, चंगी गल है। पर बाणी इस लई पढ़नी है कि बाणी सानू समझा की रही है, बाणी सानू ज्ञान की दे रही है। गुरबाणी कहिंदी, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी हे। बंदिया तू चिंता ना कर, चिंता परमात्मा नू है। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, ओ जिन्हें दुनिया पैदा की चिंता थी उन्हू है, उन्हू ते इन्नी चिंता है, उन्हें साडे आउण तो पहले ही रिजक पैदा कर दिता, पहलो देता है रिजक, समाह पिछों देता है जंत उपाह। बच्चे दे आउण तो पहला उहदे भोजन का इंतजाम परमात्मा कर दिंदा है, माता दे राही अमृत वरका दुध उहदे लई भेज दिंदा है। इस करके साहब कहिंदे, बंदिया चिंता ते उहनू है, तू उहदा चिंतन कर, उहदे प्यार च जुड़। सतगुरु साहब जी अज दे मुख वाक राही सानू गुरु दी चरण सरण विच आ के तृष्णा तो उच्चे उठण दी प्रेरणा कर रहे ने, ते नाले कह रहे कि तृष्णा किसे भेख राही नहीं बुझणी कि मैं चिट्टे कपड़े पा लवांगे ते शायद हुण तृष्णा मेरा खेड़ा छड़ जूगी। चिट्टे कपड़े वालिआं नू तृष्णा बहुत ज्यादा आखो सतनाम।

श्री वाहेगुरु। एक गृहस्थी बंदे ने तो घर ही बनाना है ना अपना घर ही, जो घर ली मेहनत करता है अधिकार है। जिन्हें घर बार छड़ के चिट्टे कपड़े पा लियो कहिंदा वड्डा सारा डेरा ही बनाउणा है, होर जमीन खरीद लो, होर खरीद लो, होर गड्डियां खरीद लो, ओहदी तृष्णा मुकदी नहीं है। इस करके तृष्णा चिट्टे कपड़े पाया, भगवे कपड़े पाया जां होर लिबास पाया नहीं मुकनी। तृष्णा ते मुकनी है अंदर गुरु के बचन नूं विसाया। सतगुरु जी जो उपदेश सानू दे रहे ने, आओ आपां मिल के गुरु के इन्हां पावन बचना दी विचार सांझी करिए। गुरु प्यार च जुड़दे आ मन बिरतियां नूं टिकाउण लई मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी, सतनाम श्री वाहिगुरु।

सतगुरु जी कहते कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। भाई तुसी भी शब्द नाल प्यार करो जे भुखा तो बचना, बाणी नाल प्यार करो, गुरबाणी नू प्यार नाल पढ़ो। जिन्ना गुरबाणी नू प्यार करोगे उन्ना तुहाडे अंदर शांति आएगी, उन्ना तुहाडे अंदरों तृष्णा मुकेगी, उन्ना तुहाडे अंदर सहज आएगा। ते सतगुरु साहिब जी महाराज कहिंदे ने भाई सतगुरु दाता सेविए शब्द वसे मन आए। गुरु दाता है, गुरु की सेवा करो। हुण गुरु की सेवा की, गुरु दे पीड़े साहब दी को मुठी चापी करनी, जां गुरु की सेवा कला गुरु नूं लिया के फुल भेट करनी? चलो ये तो मुबारक है, गुरु का अदब करना साडा फर्ज है। गुरु की सेवा दा अर्थ है गुरु के बचन मनना, गुरु की आग्या विच चलना, गुरु के भाणे विच चलना। गुरु कहिंदा तुसी सेवा कर दे जी आया नूं, पर सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी। असी गुरु कोल आके ए बारी सारी जो सेवा करदे आ, साडे मन च एक ख्याल हुंदा है कि असी बहुत वड्डे सिख बन गए आ, पर सतगुरु जी कहिंदे इदां सिख नहीं बनिया जाणा। सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, जेड़ा गुरु के भाणे च आएगा ओ गुरु का सिख है। गुरु नूं मत्था टेकना पहला कदम है, जरूरी है, लेकिन जदों असीं गुरु के भाणे च आ जावांगे, गुरु की कृपा दे पात्र बन जावांगे। इस करके सतगुरु जी कहिंदे फिर शब्द वसे मन आए, साडे अंदर शब्द वस जाएगा गुरु।

0: श्री गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे भाई जे चिंता तो मुक्त होना है, तृष्णा तो मुक्त होना है, ते नाम तो बिना ए तृष्णा नहीं बुझनी, नाम तो बिना चिंतावां नहीं मुकनिया, नाम तो बिना दुख नहीं मिटने, नाम नाल नहीं जुड़ांगे बंदा हंकार करेगा। नाम दर्थ कोई मैं फिर बेनती करा, नाम दर्थ केवल एक थां ते बैठ के रब रब करना नहीं है, जेडे करदे ने भाई सत्कार योग ने, मैं रोकदा नहीं, पर नाम दर्थ पता की है, नाम दर्थ है कि जे घर नूं देखो तवी रब याद आ जाए, रब दा नाम चेते, वाहिगुरु ने यह है नाम। कारोबार नूं देख के रब याद आए कि वाहिगुरु की बख्शिश है, ये परिवार वाहिगुरु जी की बख्शिश है, वाहिगुरु ने भाई सानू तंदुरुस्ती दिती है, ये रब ये है नाम जपना, उन्हू चेते करना, वार वार चेते करना। गावे को दात जाने निशान, ये गुरु साहब जी कहिंदे जे असीं रब दे नाम नूं नहीं चेते करांगे फिर कि मेरा घर है, मेरा कारोबार होमे आ जाएगी, मैं करी जावांगे, होमे पचे पचाए, फिर दुनिया ते हंकार च पहला ही खचत होई जा रही है, खराब होई जा रही है। ते गुरु साहब जी कहिंदे नाम तो बिना सुख नहीं मिलना, जे नाम नाल नहीं जुड़ांगे फिर हंकार च असीं खचत हो जावांगे।
1: पौड़ी
0: पावन पौड़ी गुरु रामदास जी महाराज की बख्शिश कीती हुई है जी।
1: जिनी हर हर नाम ध्याया तिनी पायड़े सर्व सुखा।
0: धन गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे जिन्ना ने हर हर हर दर्थ हुंदा जिहड़ा हर किसी का है, आखो सतनाम श्री परमात्मा सारिया का है ना, हर दर्थ हर किसी का, हर दर्थ जिहड़ा हर थां ते है, जिथे जाओ उथे ही है, हर दर्थ जिहड़ा हर वेले है, वह हुण भी है ते हमेशा है, हर दर्थ जिहड़ा हर सुख देने वाला है, सारिया सुख देने वाला है, हर दर्थ जिन्हू याद करके असीं हरे परे हो जाइए, हर दर्थ जिहड़ा साडे दुखां नू खत्म कर देवे। ये गुरु साहब जी कहिंदे जिन्हां ने वाहिगुरु जी दे नाम नू याद कीता है, वाहिगुरु नू याद कीता है, हरि दे नाम नू याद कीता है, तिनी पायड़े सर्व सुखा। गुरु रामदास जी महाराज दे कमृत बचन तनासरी राग च पढ़दे हां कि इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तिन्न, सो ऐसा हर ध्याये मेरे जी अड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मन, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुख उज्जल होई है, नित ध्याये हर पुरख निरंजना। सतगुरु जी कहिंदे ओ मना परमात्मा दे नाम नू सच्चे नाम नू जपया कर, नाम इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता है, सारियां इच्छावां पूर्ण करन वाला, सारे सुख देने वाला परमात्मा है। एक पुराणा दे अंदर हिंदू धर्म ग्रंथा जा धर्म ग्रंथा च काम तेन गऊ दा जिक्र है, काम तेन गऊ कल्प विश, किसी ने देखी काम तेन गऊ तुसी, किसी ने नहीं देखी, वह ग्रंथा च है, वह परमात्मा दा नाम ही काम तेन गऊ है, परमात्मा दा नाम काम तेन गऊ है। जे तुसी परमात्मा दे प्यार जुड़ोगे जो चाहोगे मिलता चलिया जाएगा। सतगुरु जी कहिंदे जे परमात्मा नूं याद करोगे हलत पलत मुख उज्जल होई है, तुहाडा हलत पलत मुख उज्जला हो जाएगा। इस करके नित उस परमात्मा नूं सिमरन करो, याद करो, जिन्हां ने ओहदे नाम नूं चेते कीता उन्हां ने सारे सुख प्राप्त कर ले।

कह बचन आराध्य जिन्हें गुरु के बचन राही वाहेगुरु का सिमरन किया गुरु की मत राही तिनी पाए अड़े सर्व सुखा उन्हें सारे सुख मिल गए जिंदगी दे अंदर।

चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे अरियत देग तेग फते। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब।

पवित्र अस्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे अमृत वेले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दीवार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचार छे पौड़िया आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दिया सेवा संभाल करदिया हजूरी अंदर विचरदिया अनेक प्रकार दिया भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी अगां

लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैना जेता समुद सागर नीर भरिया ते अवगण हमारे दया करहो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई

अरदास मारी स्वामी विसरना सुख दाते तू अथा पर तू चा अथा अपार अत ऊंचा।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ध्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै शब्द फजाए तेग बहादुर सिमरै कर नाउन दे आवे ताए सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

दास हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाही माया मोह भरम पै भूले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनेहु गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ठीकर फोर दे

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद।

0: ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਪੁੱਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲਿਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੈ ਨਾ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀ ਠਾਕੁਰ कहे मन पौ करया उड़े उड़ आवे सैकोसा तिस पाछी बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परवरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परवरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वही सब त्या वही तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार बरंबे अंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवही हर ते आवही तुद जी से जाने जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर ते आया जी तेन टूटी जमकी फांसी जैन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से बया जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापहि जपहि बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत बले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरत जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सिका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खे, विजोग मिल बिछड़या संजोगी में। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने है सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरणे भैरे निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले। हम देखा तहें डूबियरे, मान एक न चेत समूड मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहो, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा। जैनो तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाज केवल नाम। श्रृंजाम लाग पवजुल तरन कै, जन्म प्रथा जात रंग माया कह रहो। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चाव पाई, अमरी करो हद रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबय तुम काबो हो। आभाद मुहे बचावो हो, सुखी वसे मोरो परवारा। सेवक सिख सवे कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सवैरन को आय संगरिये, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मुहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जुग अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दें दक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को बल मो बद कियो, कड़कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के बढ़ बढ़ की जन्ने, जावो उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत ताव देह अपारा, जब आकर्ख कर तुहों कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंब, तक्का मूड़ उचारत पिदा, जाको पीव ना पावत बिदा, तको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ पीत न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न बिव, आप अपनी बुध है जेती, बरनत पिन बिन तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, इक रूपे अनुपस रूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा, अंडज रसे तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कौ फूल राजा हवै बैठा, कौ सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, आजुग स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे वार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलिच करो रणगाता, जे अस्तु जे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहवाय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट नह अह, रक्षा हुए ताहीं सब कल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताकी ताप तनक मय हरिहो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट शह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सुमारा कल फांसती ताहे ओबरा जिन नारे नाम तेहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तर नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाय बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपाण कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हरो द्वार की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हरो द्वार महिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां वाया सह सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हई केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सुमना गल्ला सुमृत स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो पुखा सब गवैया करशां सुख मने वसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिसदिया एहे वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पाई शब्द घर सुपागे घर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दू तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो वडवागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणी महला पंजवां थाल विच तेन वस्तु पईओ सते संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु ज जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊचे ते सगल सामग्री तुमरे तुम ते हो ऐसा

पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरता।

कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए, मोहन रघुन लीजे लड़ लाए, राहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम होवत तन छार, प्रभ चित आए पूरन सब काज, हर बिसरत सबका मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीता।

जुगो जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझ रहवर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यार वाले हो बड़ा तरस कीता है सतगुरु जी ने अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालिओ जिथे गुरु के कीर्तनिया पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच सरवण कर लिया बाणी दा रस बाणी दा आनंद माण रहे सा जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो ओह चल रहियां लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए विचारां कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इत्थों क तक सरवण कीतियां के सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी दे कोल राजे भीम चंद वल्लों मुआफीनामा भेजिया और भाई दया सिंह जी ने गुरु साहब नाल विचार कीती ते तन गुरु कलगीधर साहब ने बचन बिलास करदे आख्या भी कपट पहला उन्हें ही कीता है असी नहीं जे हुण साडे नाल चंगे संबंध बनाउणा चाहुंदे ने ते असी उन्हां नाल कोई वैर कोई दुश्मनी नहीं रखते। इस तरह जी जिहड़े पहाड़ी राजे ने राजा भीम चंद उन्हां ने गुरु साहब दे नाल एक बारी फिर अपना प्रेम जिहड़ा उह बनाया सतगुरु पातशाह लई कई तरह दीआं भेटावां वस्तुआं उह लै आउंदे ने ते एक दिन गुरु पातशाह सभा सजा के बैठे ने ते एक बेहंगम दे पंछी दे सुंदर खंभ जिहड़े उह लिया के गुरु साहब दे सन्मुख अर्पण कीते और गुरु साहब दे सन्मुख नमस्कार करके ना बैठ गया।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती स्मरक गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास साहिब जी सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे। घर नौ निदा वेताए सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा

बंद कटाए खोपरिया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ली कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा त्या अंतर के खालसा जी बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा त्या अंतर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खाल

सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान त्रुसा दान दान अंसर दान नाम दान श्री अमृत सरजियां दे दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो।

बढ़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी, आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पेटा वांदर प्रवान करनिया, यात्रावां सफल करनिया, दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम बानी दियां दातां बख्शनिया।

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव ब्रंच तर त्यान नितै जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गरन समत तरन तारन प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै, श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित्त बसै, गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत समारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को, मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न बिचारन को, हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को, संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है, संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है, तरम पंथ तरयो तरनी तर रे आप, तरम पंथ तरयो तरनी तर आप रहो लिव तार न तावत है, मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है, रव के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है, निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर, गहर गंभीर अथा अत बड सुपर सदा सब बिद रतनागर, संत मराल कर कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कालजुग दुर्त दूर दरबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर,
2: जाको मुन ध्यान धरै फिर

तेज पुंज तह लोग परगास देखत दस भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगास सेवक सिख सदा अत लोभत अल समूह जो कुसुम सुबास बेदे मान गुर आप।

तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद अर सिद ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो।

तरयो गुर हाथ। तीन पवन पर पूर रहे ओ सोई, अपन सरस कियो न जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत।

0: तै हर परम पद पायो।
1: सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान रस रस होइयो। गुर अमरदास करतार कियो वसो, वहो वहो।

सोडी सृष्ट सगल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। मोह मल विवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो

सिख सेवंत धुरे धुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रहलो अगम निगम उदरन जरा जमे आरो गुर अमर दास।

समर्थ गुरु सिर हथ तरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो, निसबासर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पांडर्यो, पन दास आस जगत्र गुरु की पार्स पे।

सिर साहांदे साहू जिस पास बैठियां सोही है सब नांदाविसाहू सतनाम